खबर आस्ता है थके के नाथन गई थी जंगल वस्तु दियो खबर आस्ता है नाथर बामेत कि प्रस्ते युवा के अंगरागने तक बामेत आप से सैमुएल चलागत तबोसे कि प्रस्ते युवा के अंगरागने तक बामेत आप से सैमुएल चलागत तबोसे ने बगो कुए तब सामीज एंग मगिजोर लोकेशन चिपकारिया वाट के यो साउथ एलगेयो मराक्वेद Kibaraste iwak eng ragne takuba metab mse Samuel Chelagat Tobose nubogo kwetab samij eng Marijor location Chepkoria Ward Keio South Elgeyo Marakwet County Nagibit eng tarikit 13 arawetab 9 kongit kingotesetai konyoru kanyoiset eng sipitalit nebo living room nemitei Kipkorkot eng county nebo Uasin Gishu kosubkei ak miondo nebo seriat anan kansa. Manung'otiotab Chris Chelagat, kwandab Jackson Tobosei, Joyce Tobosei, Diana Rotich, Vey Tobosei, Patrick Tobosei, nekikosirto Vincent Tobosei, ak Edwin Tobosei. Weritab yugoi nebo